साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: आमिर खान और काजोल की फिल्म फना, शान एंड कैलाश खेर ऑन द वोकल्स। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुझको बता। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज थर्सडे की सुबह शबनम साही के साथ। गुड मॉर्निंग
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
0: Seher Beg dares to dream beyond limits, but destiny ties her to Mahid Niazi, a man she never chose. In a world of rules, control and judgment, will her dream survive? Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday 9:25 PM only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. कौशिक जोशी जी कहते हैं, नो मैटर वेयर यू आर इन लाइफ, इफ यू लेट लव एंड काइंडनेस बी योर गाइड, यू विल ऑलवेज फाइंड योर वे। दिस वन फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। हमने वहीं लगाया दिल, क्यों लगाया आपने?

अनन्या पांडे एंड लक्ष्य हेडलाइनिंग दिस लव स्टोरी। फहीम अब्दुल्ला की आवाज में ये टाइटल ट्रैक टेकन फ्रॉम चांद मेरा दिल। आपको याद दिला दूं, सनराइज रेडियो हैज लॉन्च्ड अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट चैनल, द सनराइज कॉर्नर शॉप पॉडकास्ट, ब्रिंगिंग यू इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशंस विद सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन बिजनेस, इन पब्लिक सर्विस एंड ऑफ कोर्स इन एंटरटेनमेंट। यू कैन आइदर वॉच और लिसन नाउ ऑन यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट एंड ऑल मेजर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स। All you need to do is search Sunrise Corner Shop Podcast. This is also available, by the way, on the Sunrise Radio website, which is sunriseradio.com, and on the Sunrise Radio app. Don't forget to subscribe and follow the channel for more inspiring conversations.

0: send joy. Western Union makes money from currency exchange.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए।
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड्डा सोना,
2: वसीम ज्वेलर्स।
4: सेव अप टू 50% इन द डनहम सेल।
5: Go on, get some savings in your life with brilliant offers on thousands of products, from bedding and bathroom to curtains, furniture and so much more. And breathe. Save up to 50% in-store, online and on the Dunelm app. Dunelm, the home of homes. T's and C's apply.
6: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली, वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल, सिर्फ हिंदी Z5 पर।

दिन में बबलू, रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काज। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Zee5।

0: celebrating 36 years of excellence.
1: The greatest Asian radio station in the world. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com।
3: Mubarak to all from the management and staff of Sam Travel and Tours. 714 Romford Road, London, E12 6BT. Phone 0208-478-8911. At all protected. It is simple with Dimple. Self-drive cars, vans, 9 or 17-seater minibuses available to rent for leisure, pleasure, business or holiday at prices cheaper than the rest. And best of all, for this month only, an extra 10% off on all bookings at the weekends. That's right, Friday to Sunday, save an extra 10%. Hire for a day or longer for UK or Europe. T's and C's apply. It is simple with Dimple. Visit dimplemotors.co.uk or call 0208-205-1200 or WhatsApp 07951-885-022.
4: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
5: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
0: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, running successfully at a cinema near you.